0: लगे तिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे।
1: आए हैं तो काम भी बताइए,
0: ना ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए। कुछ तो बता, अरे कुछ तो बता।
2: Dengarkan Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni.